तेरे दर्शन को हम बारे। आप जी दी पवित्र बाणी विचों ए शब्द किवें अकाल पुरख तो सड़ के जा रहे हैं, किवें बलिहार जा रहे हैं। आख्या है वाहिगुरु मेरे से कृपा कर, मैं तेरे दर्शनों तो बलिहार जांदा रहा। ए शरीर दुख विच होवे सुख विच होवे, मैं तेरा नाम ना विसरे, तेरा शुकराना ना भुले। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी पवित्र बाणी आप श्रवण कर रहे हो। जितनी भी आपने बाणी दी रचना कीती, एक एक अखर ते चल के विखाया। जे आप जी ने लिखिया है जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, जैसा अमृत तैसी बिख खाटी, जैसा मान तैसा अभिमान, जैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त। संसार विच ऐसा होके विचरना बड़ा मुश्किल है कि जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, सोने नू और मिट्टी नू एक समान समझना, मान और अपमान नू एक समान समझना बड़ा मुश्किल है, अमृत और जहर नू एक समान समझना कोई मखौल दी गल नहीं। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक एक अखर ते चल के विखाया। साई मिया मीर जो समय दे पूर्ण पुरुष सन, जिन्होंने श्री हरिमंदर साहब की नींह रखी सी, जब ए सुखमनी साहब जी की पवित्र बाणी सुनी तो बेनती की, गरीब निवाज कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी संसार विच है भी सही जेड़ा सोने ते मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे, मान और अपमान नू एक समान समझे, कोई है भी सही ऐसा मनुख? तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मियां मीर जी समा आवेगा तुहानू आपे ही पता लग जाएगा भाई ऐसा मनुख है जां नहीं। जदों समा आया धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी तत्ती तवी ते बैठे हन, किथे आप दा पवित्र शरीर मखमलिया और सोहनिया सेजावां ते बैठदा सी, मखमली गद्दियां ते बैठदा सी शरीर। हजारा प्यार वाले श्रद्धालु गुरु के सिख फुलां दी वर्खा करदे सन, सैकड़े गलां विच हार पाउंदे सन, सिर ते छतर अते चौर झूलदे सन। किथे इतना सत्कार ते किथे अज धन गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी ते बैठे हन, अग बल रही है ते चौर दी थां ते गर्म रेते दे कड़शे साहिब जी दे शीश विच पाए जा रहे हन, ते गुरु अर्जन देव पातशाह फिर भी मुस्करा रहे हन। चेहरे ते कोई आभा है, ओही नूर है जो सशोभत मखमली गद्दियां ते बैठ के वेख्या सी, अज ओही नूर ओही आभा अज गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे चेहरे ते देख के साई मियां मीर जी दे नैन कटोरे भर आए। गरीब निवाज एक ही कौतक है, आप समर्थ पुरख हो, आप चाहो ता एक अख दे फोर विच धरती नू पुठियां कर सकदे हो, एडी समर्था दे मालिक हुंदिया भी आप इतना कष्ट सहार रहे हो। उचारण करो श्री धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, साई मियां मीर ओ बचन चेते करो,
कदे तुसी पुछया सी कि कोई ऐसा पुरख है जो मान और अपमान नू एक समान समझे, सोने और मिट्टी नू एक समान समझे, अमृत और जहर नू एक समान समझे। क्या गरीब निवाज, आप जी ने एक एक अखर ते चल के दसिया, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपका शरीर तत्ती तवी ते बैठा होवे। सारी प्रकृति सारे आप दे हुकम विच खड़ोते होन, ए पातशाही तां क्या है, लोक परलोक दे आप पातशाह होंदे होए भी इतना कष्ट सहार रहे हो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा, मिया मीर इस चम दे नाल प्रीति क्या करनी है, प्रीति चाम शो क्या किया, जे प्रीति करनी है ता अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दे नाल प्रीति कर। इस चमड़े दे नाल क्या प्रीति करनी है, ए ता एक दिन मिट्टी हो ही जाना है। तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से, गुरु अर्जन देव पातशाह कह रहे जे साडा तन तप रहा है गर्म रेते दे करशे पै के तत्ती तवी ते, तो कोई गल नहीं की होया, क्योंकि आपने लिखिया सी तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, ते ओही कौतक करके आप विखारे सन। आख्या मिया मीर तन तप रहा हम शांत है हरि नाम स्यों, जे तन तप रहा है तो की होया, नाम जप के साडी आत्मा साडा मन तो शांत है ना। प्रीति चाम स्यो क्या हुआ, मिया मीर ने सेजल नेत्रां दे नाल आख्या, हे गरीब निवाज मैं ए दुख सहार नहीं सकदा, गर मुझको हुक्म दीजे जालम को जान से मारूं, जे तुसी नहीं कोई शक्ति विखाउंदे तो मेरे विच समर्था है, जे आप कृपा करो मैनू हुक्म करो तो मुझको हुक्म दीजे जालम को जान से मारूं, अर उनकी शाह रग पर रख दूं अभी दो धारा। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ने ओ शांत स्वरूप, ओ बाणी दे बोहत, ओ नाम दी मूरत गुरु अर्जन देव पातशाह, सुनते ही सतगुरु ने शांति का कुल्फ खोला, पाना ही पाना कह कर जलते हुए को ठारा। आख्या भाई असी पाना मनना है, और पाना मन के दसना है, अगों किस तरह सेवक मनंगे, जे मैं आप नहीं मनांगा, उच्चारण करो श्री। मियां मीर ने आख्या, गरीब निवाज मैं ए वेख नहीं सकदा के आप दे रोम रोम विच शाले पै चुके हो, ऐसा दुख। तां गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे, मियां मीर जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले, जितने जिस्म पे पड़ेंगे शाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही प्यार वाले सेवक होंगे भाई, इसलिए असली पाना मन के दसना है। आज इस तरह पतंगा आके शमा तो कुर्बान हो जाता है, जे सेवक अपने मालिक तो कुर्बान नहीं होया तो सेवक कदा होया, उच्चारण करो श्री। इसलिए हजूर बख्शिश कर दिया, हे वाहेगुरु तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शना तो मैं बलिहार जाता हां, सदके जाता हां, और यही दास

0: जैसे माँ राजू बाबा ऐ पड़े सन। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माँ तनवान दी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नादा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर को। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तप ते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचो आवाज आई, पाले तत्ते थमा नु जफिया आपे तेनु रम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर ओदा वाल भी वेंगा ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी माँ, भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत मेरी और आप पुठे पार पड़े जा रहे। आज तो बात खेल करी ऐसी गल की थी तो मैं ऐसी सलाह दिया कि लोग हैरान किस्म में भी पड़ जाएंगे।

वर्ष वह करके अरसात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सारसता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा

आओ गुरु के सिखो। ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हैं, आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनू याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी, आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, आ नवे सिख सज रहे, भावे उन्हूं समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी बीबी सी, उसने उठ के कहा भावे मैनूं अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे चरणा नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या मैं नितनेम नाल इस नूं टेप ते सुनदी हां और बड़ा ही मैं जिवें एक शब्द सुन के हेमकुंड साहिब ते पहुंच जांदी हां। तो गुरु की साध संगत आओ आपां वी उसे ध्यान नाल जिस ध्यान नाल कलगीधर पातशाह जुड़े बैठे ने, आपां भी कुछ समय लई

मैं बंदा बेखरीद अच्छा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सब तिसका सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंते को है तो जानू काचा।

तू जन के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन का प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मसलत परवान चरण शरण हम अनाथ नाथ हरतन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी

मध्यन होत साधु तुरे आवण जान रेखित पाई जन्म मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दाज गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन्मानुष सब बनिहार हर गुण गाओ।

मैं मन की हालत किथे जाके कूकां ते पुकारा तेरे दर तो बिना कोई आसरा नहीं मेरे मालिक रहमत करो ते जोड़ लवो टुटे होए नू बिछड़े होए नू अपने चरणां नाल जोड़ के सतसंगत दा आसरा बख्शिश करो इथे मेरा मन टिक जाण दा

बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे कुल बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुर नैन पैन गुर गुर करो गुर नैन पैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कहे गुरु सत कव नल कहे जिन गुरु न देखियो ने कियो

आगे को किच तुल्हा बांधो। कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुल्हा तैयार कर जिदे ते तू चढ़ के भवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

इस बुढ़ी मां दा सहारा छोटा जिहा पुत्र मालक दा पाणा वरत्या। दुखां ने इस माता नूं केरा आण पाया, पाणा इंज वरत्या के माता दा पुत्र गुजर गया। ए मां ताहां

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए। झपट पड़ता इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु

आओ भाई, अज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नू मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है, लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाईए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहु भय किन्नर पिसाच कहु प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहाने जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीश तपगी साधे, लाख जोगीश करते जोगा, लाख पोगीश्र भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बाधिया, तेरा अंत न पारा बाधिया।

पौन साधना कतेक बद अरब के आर भी अराध्य तेरू नाम है। फारस की फरंगी माने कलदारी को रसी डाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम गए। मरहट्टा मंगल तेरी मन सुन तपस्या कर, मरहट्टा मंगल तेरी मन सुन तपस्या कर।

एहो चलाए राम कीड़ा थप देवे पत सागी हाँ लश्कर करे सुगा साहेबा तेर अंत न पाया बाजिया तेरा।

फरंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावार यार। रो के रुगेले मग देश के बंगेले भी, बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालित है, गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे, गुन गावे।

தள்ளிவிடுவது. धरती से ज्यों ज्यों संकट आए, जिन्ना क संकट उन्नी की शक्ति निरंकार ने दे के भेजना अवतार उन्नी की शक्ति समा होया ते मच्छ अवतार आया, समा होया ते कच्छ अवतार आया, समा होया ते नरसिंह अवतार आया, समा होया सोलह कला जिनी शक्ति लोड़। पहली विशेषता ही कि समा एहोजा जो बनया कल युग बिच निरंकार ने फिर आप आना किया है गुरु नानक के रूप से। पहली विशेषता ही बाकी अवतार ज्यों जिवें आए तिवें तिवें ड्यूटी देके जांदे रहे। ये पहली विशेषता ही गुरु प्यारे गुरु नानक प्यारे आखो सतनाम दसवें जामे तो बाद फिर शब्द रूप विच सदा लई धरती ते टिकदे दुनिया दे बेड़े बने लाण लई। जिस दिन तुहाडी अख खुलेगी उस दिन पता लगेगा कि इस शब्द रूप विच गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी का जिन्होंने ओट आसरा लिया, इस बाणी ने पता नहीं किन्या कानून ब्रह्म ज्ञान की अवस्था च भेजा है। इस बाणी ने पता नहीं किन्या नू अनुभवी प्रकाश इसकी प्राप्ति हुई है। ये बाबा हरनाम सिंह पुछो मंडी आले रसना ते इन्नी ताकत आ गई जो कहना सो सत, इसकी शुरुआत कितों हुई, बैटरी कितों चार्ज हुई, दरबार साहब की परिक्रमा विच छोटी उम्रे 7.5 लाख पाठ जपजी साहब जी दे गुरु ने सेवा ली।

0: में आन बहुत मिल बैठत। जदों सुखां दे साधन होंदे हन, चार पैसे पले होन मनुख दे, ता बहुत लोग रिश्तेदार सज्जन मित्र आके घेरदे हन। रहस चोहूं दिस घेरै, हर एक मनुख चाहुंदा भी मैं इस दी प्रसन्नता लवां। ते जदों धन दौलत पदार्थ मुक जांदे हन, तां फिर विपत परी सब ही संग छाड़त। कोई दुख आ लगे, मुसीबत पै जाए, धन दौलत चले जान, ते फिर रिश्तेदार भी मुख मोड़ जांदे हन, सज्जन मित्र भी मुख मोड़ जांदे हन। बल्कि परों कोई आ रहा होवे वेख लवे, ते पासा वट के पासे चला जांदा है भई किदे कुछ मंग ही ना दवे। उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरू।
0: इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त। को ना आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जांसो। बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियाउंदा है, चंगे